0: हुए पहल।
1: ओ यार नाता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 to 1000 बंदियां दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-699-9999।
0: स्वीट महल।
3: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ां दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1-800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम, एनी टाइम होम रेनोवेशन। सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम प्लम्बिंग किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमा नु समय ते करवाउण लई चेते रखो। एनी टाइम होम रेनोवेशन्स। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 647-271-1735 647-271-1735। एनी टाइम होम रेनोवेशन।
4: घर दा एक्सटीरियर होवे मजबूत ते लुक होवे कमाल दी, ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी। क्वालिटी वर्क, प्रोफेशनल सर्विस, बिल्ड टू लास्ट। मैनसूरी ते स्टोन वर्क, इंटरलॉकिंग फेंसिंग, पैडियो, रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहते हो, लैंडस्केपिंग, हार्डस्केपिंग, थोड़े एक्सटीरियर प्रोजेक्ट लई कंप्लीट सोल्यूशन ओरकल कंस्ट्रक्शन। रिपेयर्स तो लेके कंप्लीट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन तक ओरकल कंस्ट्रक्शन दा नाम याद रखना जी। आज ही कॉल करो 1-888-688-8956 या 416-474-6836। Oracle Construction, strong foundations, lasting results।

0: केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ,
2: रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320, CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।
3: Listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर की आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Yeah Fateh Desi Crew Please, so chapa sa siya, nai ka nasi. Halit shuri hoya.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: सानू मंजलाना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

सुरमा सुरमा सुरमा कुड़िए अखा वाला जहर कुड़े दिन विच लगे रात रात जई बनकी सिखर दुपहर कुड़े पैंदा ए लचकारा डायम।

यार वैरियां तो घट नी सक्सेस छड़ दूजी मैनू कोई लत नी हुनर तो उच्चा रुतबे दा कद नी बैल बुद्धि मुंडे इत्थे कोई सप नी।

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

0: की वैरायटी।
1: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
0: लव साउथ
2: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकते हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकते हो। इस तो अलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदने वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैरेडन एयरपोर्ट एंड मेफील और कॉल 9058409000 ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।
3: घर दा एक्सटीरियर होवे मजबूत ते लुक होवे कमाल दी ए है कमाल ओरकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी क्वालिटी वर्क प्रोफेशनल सर्विस बिल्ट टू लास्ट मैनसरी ते स्टोन वर्क इंटरलॉकिंग फेंसिंग पैडियो रिटेनिंग वॉल्स बनाना चाहुंदे हो लैंडस्केपिंग हार्डस्केपिंग थुआडे एक्सटीरियर प्रोजेक्ट complete solution Oracle Construction repairs to like a complete property transformation tak Oracle Construction da naam yaad rakhna ji aaj hi call karo 1-888-688-8956 ya 416-474-6836 Oracle Construction strong foundations lasting results.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: जे कलोटी दा पैगाम थोड़े सारिया दे नाल, जेकर ट्रैफिक टिकट, स्मॉल क्लेम, सिटी बायलॉज जां मकान मालक किराएदार दे पौणे च फस गए हो तो साडे कई वरियां दे माहर तजुर्बे दा फायदा लवो। जे कलोटी अजिहा ना थोड़ी मुश्किल कर देंदा आसान। ट्रैफिक कोर्ट एडवोकेट्स लाइसेंस बाय द लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कैनेडा। जे कलोटी, योर रिकॉर्ड मैटर्स, यू मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर। नाउ न्यू लोकेशन 7920 हुरंटारियो स्ट्रीट, यूनिट 43 इन ब्रैम्पटन, 905-796-5656। दैट्स 9057905-7905-5656. Jay Kaloti, tried, trusted, most effective.
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cars, tailor transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
3: HK Movers.
6: HK Movers.

0: तन ते पाया कपड़ा जो भी पाड़ पाड़ के लाउना ओए मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो।

0: ले लिख ला वन गुड मार्क प्लेस इटोबी कोक यूनिट 5
1: कॉल 6477069257 6477069257
2: वाह गिल साहब ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी उपरो एनी सारी एनर्जी ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है
3: ओ यार काव्य होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ
4: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो बीमारी पावे कोई भी होवे कॉल करो
2: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन
5: कैलेडन सब्जी फार्म जिथों तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लैणा विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो इस तों इलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदण वास्ते पहुंचो 12050 एयरपोर्ट रोड इन कैनेडन एयरपोर्ट एंड मेफिल और कॉल 9058409000 ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैनेडन सब्जी फार्म
6: जे बिजनेस दा करना चाहंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते आईपीटीवी ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 Monday to Friday 11 AM to 12 PM and 6 PM to 10 PM to see 24/7 IPTV TV apne business di promotion kara sakte ho aaj hi call karo 416-716-7094
7: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपने नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड लई हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी लै सकते हो ग्रेट फूड बेस्ट सर्विस लई लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन कॉल 905-450-9054-506464
8: Lali Sweet and Restaurant Lali Sweet and Restaurant
9: Ritz Furniture da message zara dhyan na suno
10: sasta

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca।
2: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो, CNN टोरंटो।
3: CNN टोरंटो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो और 7 बजन वाले ने ते स्टूडियो दे विच हाजिर ने इस वक्त अंजू सिक्का जी ते नाल मेरे हॉटलाइन ते हाजिर ने का।
4: दिस इज CJMR द वॉइस ऑफ द सिटी, पार्ट ऑफ व्हाइट ओक्स कम्युनिकेशंस ग्रुप, योर ट्रस्टेड लोकल रेडियो प्रोवाइडर फॉर मोर देन 70 इयर्स।
5: बहुत बहुत प्यार पैने की सत श्रीकाल
3: जी। एक्चुअली तुसी पहला आ गए 5 मिनट, मीता जी बाद च है। मीता जी वेलकम, स्वागत जी आयां नु।
6: थैंक यू जी, थैंक यू चावला जी। तो सारे आनु प्यार भरी ते निग्गी सत श्रीकाल, गुड इवनिंग।
3: कैसे हो?
6: क्या सुनना चाहते हैं? चढ़दी कला।
3: वही है।
5: मैं कोई तरह के पास आई नहीं, उनका जवाब क्या था?
3: चढ़दी कला।
5: चढ़दी कला,
3: मैं क्या सुनना चाहती हूँ। हमारा बहन भाई का चलता है, मैं बोलता हूँ कैसे हो, क्या सुनना चाहते हैं। चढ़दी कला। हाँ, चढ़दी कला। मीता जी नाल गलबात करेंगे अंजू जी, उस तो पहला वैदर रिपोर्ट आज दी जिहड़ी तुहानू सांझी कर दी काव्या होम केयर वालों स्पॉन्सर की जाती है। मैं डेली दसदा कि जिवें डायग्नोज करके तुहानू इह मेडिसिन देणगे, तुसीं उस नूं सवेरे शाम दुपहरे जिवें तुहानू इह दसणगे गाइड करनगे कि इह मेडिसिन इन्नियां गोलियां इवें लैणियां, इस तरह लैणियां, तुसीं उसका सेवन कर दिओ तो बिलीव मी लगातार सेवन करन दे नाल हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता तुहाडी जिहड़ी बिमारी आ तुहाडे शरीर नूं छड्ड के दूर चले जांदी है, तुसीं नंबर 9 हो जांदे हो। काव्या होम केयर खानदानी प्रैक्टिशनर मीता ओझा दी गोल्ड मैडलिस्ट, उन्हां वल्लों स्पॉन्सर कीता जा रहा इस सैगमेंट नूं। और नंबर है 647-760-2779, 647-760-2779। हांजी हांजी
5: जी मीता जी, मैं तो से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी।
6: थैंक यू सो मच अंजू जी।
5: जी मीता जी, आज हम किस बीमारी के बारे में बात करेंगे?
6: जी आज हम देखेंगे साइनोसाइटिस के बारे में, और वेदर चेंज करके काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती रहती है कि एलर्जीज का टाइम है, फ्लू चल रहा है, तो उसके साथ साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो हमारे स्कल में जो पैसेजेस होते हैं, कैविटीज होती हैं, उसको साइनसिस कहते हैं, और ये कैविटीज के अंदर की लाइनिंग जब इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इस कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। और अक्सर आप देखोगे कि जब भी साइनस में इन्फ्लेमेशन हुई, आंखों के ऊपर आईब्रोज के साथ जो साइनसिस होते हैं, वहां पे आपको पेन हो जाना, स्वेलिंग फील करना, तो उसी तरह आंखों के नीचे वाले जो साइनसिस है वहां पे भी काफी बार पेन फील होता है, और नाक में नीचे की ओर जब झुकते हैं तो टिप ऑफ द नोज में आप प्रेशर फील करोगे। अब इसके साथ क्या होता है कि जैसे ठंडी हवा लगी तो उसके साथ इन्फ्लेम्ड हो गए, जुकाम कोल्ड फ्लू वाले जो वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं उसके साथ आपको साइनस की प्रॉब्लम आ गई, या फिर एलर्जीज। अब साइनस नॉर्मली जो है वो एयर से भरे होते हैं, तो ये सारी कंडीशन करके क्या होगा कि आपके एयर पैसेजेस में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उस करके उसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, और फिर क्रोनिक जब ये कंडीशन बनती जाती है तो क्रोनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आपको रहती है। अब ऐसे में आपको स्टफी नोज है, रात को लेटते वक्त जो म्यूकस आपके गले में साइनसिस में इकट्ठी होती है, तो सुबह उठने के साथ ही वो गले में ड्रिप होने लगती है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वॉटरी है, थिन है, फिर उसका कलर भी डार्क होता जाता है, वो बलगम खींच के आपको निकालनी पड़ती है, और इसके साथ रात को खर्राटे भी आते हैं, नेजल ब्लॉकेज है, दिन में फिर ये रेशे की प्रॉब्लम है, और इसी के साथ आपको सिर दर्द, ये जो हमने एरियाज देखे साइनस के कि आंखों के ऊपर का एरिया है, चेहरे पे आंखों के नीचे का एरिया है, वहां पे स्वेलिंग हो जाना, जिस अफेक्टेड साइनस में इन्फ्लेमेशन हुई है ना वहां पे सोजिश भी आ जाती है, और साइनस की पेन करके ये जो स्वेलिंग करके नर्व पेन है वो आपके दांतों तक जाता है, सो अपर टीथ में भी आपको ये पेन फील होगा, फीवर आ जाना। एंड क्रोनिक केसेस में क्या होगा कि फिर आगे जाके स्मेल के साथ इंटरफियर ये करता है, सेंस ऑफ स्मेल के साथ, तो उसके साथ आपको पार्शियल स्मेल का लॉस हो जाना, कोई स्मेल आ रही है पता ही नहीं चलना, कई बार जो पेशेंट्स भी आते हैं ना कि सालों से मुझे कोई स्मेल का पता ही नहीं चलता है, तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस वाले पेशेंट में ये चीज है, बैड ब्रेथ होता है, तो माउथ का टेस्ट भी कई बार चेंज हो जाना। अब अगर आप इस तरह के सिम्टम से बार बार सफर कर रहे हैं और स्पेशली ये वेदर चेंज के टाइम ये सारी चीजें बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि वी डू हैव, जिनको अभी हुआ है तो एक्यूट मेडिकेशन भी है, 1 वीक 2 वीक्स की मेडिकेशन लेके आप सही हो सकते हैं। तो जिनको बार बार रिपीटेडली ये हो रहा है, क्रोनिक साइनोसाइटिस, नाक के अंदर मास बढ़ जाना, बड़ों में नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, तो छोटे बच्चों में एडेनोइड्स का एनलार्जमेंट है, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए हैं, या इम्यूनिटी लो है, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट जो है काफी हेल्पफुल रहेगा। सो फील फ्री टू कॉल अस, काव्या होम्यो केयर, वी आर ओपन मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक, एंड लोकेशन है हमारी 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन। फोन नंबर है मेरा 6477602779-647-7070-2779.
3: जी बहुत शुक्रिया अमिता जी, थैंक यू वेरी मच।
6: थैंक यू चावला जी।
3: जी मेहरबानी है संजी काव्य होमकृत अमिता ओजा जी। ते लो फिर हिंदी समाचार तुहाडे पेश करने वाले आ, जिस नूं लै करके हाजर ने मैडम अंजू सिक्का जी, परंतु कहिंदे ने कि एक गीत क्यों ना सुन लिया जावे। अज नो इंग्लिश विद इन 1 मिंट भी प्ले किया जाएगा, और तुहानू अज तोहफे जिहड़े ने सीके लिक्विडेशन तों भी दवावांगे, और तुहानू जिहड़ा है सीके लिक्विडेशन दे तोहफिआं दे नाल नाल पिज्जा मशीन दा खवावांगे, जिथे 2 लार्ज पिज्जा जवेद तुहाडे मन पौंदियां, 4 टॉपिंग 24 डॉलर 93 सेंट दे विच तुसी पिज्जा पिक कर सकदे हो मन पौंदा, 2 डिपिंग सॉस नाल, 2 फिलोसफर्स टेल्स ब्रैम्पटन हॉस्पिटल नंबर 9054921222। इस दे नाल प्रोग्राम दे विच मैं भी दस दिया कि तुसी जेकर IPTV बॉक्स की सर्विस लैनी है, 12 महीनिया का $100 ते असी तुहाडे लई 2 दिन का ट्रायल पहला बिल्कुल फ्री दिने। नंबर है जी 9647-543-5858-6475545859 ते कॉल किया जा सकता। लो फिर खूबसूरत नगमे की ब्रेक, ब्रेक तो बाद तुहाडी सेवा दे विच हिंदी समाचार अंजू जी पेश करनगे। कल ते अज मैनू काफी फोन कॉल्स आईयां ने, मैं अपने स्रोतियां दी कचहरी च रखना चाहुंदा कि बदला लियाओ जी, बदला लियाओ, तुसी कर सकदे हो बदला, तुसी कर सकदे हो बदला। बदला असी नहीं लिया सकदे, असी तुहानू खबरां सुना सकदे, असी तुहाडे नाल सिर्फ एक डाकिए दी तरह, साडा जिहड़ा फर्ज है वह एक डाकिए दी तरह, उत्थों खबर चक्की ते उहनू बिना तरोड़ मरोड़ तों, बिना कटवट तों उसे तरह तुहाडी कचहरी दे विच रखना, यह साडा धर्म है, साडा फर्ज है। हां जिहड़े कट वट के मसाला मसूला ला के रखदे ने, उहनां दा फर्ज है, उहनां दा धर्म है। हुण तुसीं दुधा दुध पाणी दा पाणी करना, बदला तुसी लियाउणा है, ते जे बदला आपां लियांदे लियांदे वोट उहनू पाउणी आ कि जी इह ते साडे मामे दे मुंडे दा मुंडा, उहदा गां यार आ, ते असीं यूनिवर्सिटी कॉलेज इकट्ठे पढ़दे रहे आ, ते इह साडा मित्र आ, ते साडे ग्राही आ, ते साडी गोत वाला आ, साडे महल्ले दा, साडे इलाके दा, साडे महकमे नाल संबंध रखदा, ते फिर तुहाडे बदला ठठे पूछ गए, फिर नहीं आउणे, फिर बदला लियांदे लियांदे आपां तुर जाणा, बदला नहीं आउणा। बदला आया ना पंजाब च इक, वेख लो, ओदा लिया पैना बदला, तुहानू एक बारी लहर बनानी पैनी है। वोट उन्नू पायो जिहड़ा तुहानू वादे जिहड़े कर रहा उहदे च कैपेबिलिटी है कि वह वादे पूरे कर लवेगा। तुहानू सामने बिठा के तुहानू कितने पढ़े लिखे मुल्क दे विच बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, तुहानू लॉलीपॉप नहीं दिते जा रहे। अजकल बड़ा वधिया काम चलिया वा, 10-20 बंदियां दी रोटी मंगाओ, 30-40 बंदे खा लेंदे आ, ते जिहड़ी मर्जी ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋ ਚਟਨੀ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜੰਮੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਬਦਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਚਿੜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੀਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਰੈਡੀ ਜੀ?
5: ਹਾਂ, ਗਿਵ ਮੀ 5 ਮਿੰਟਸ।
3: 5 ਮਿੰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ,
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।